होए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजय महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय द्याखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी,

बदी। मानो कीट एक वृति सब जान देवन कह कह भगवान, जिसका दिया रे अगाय वर्ण तृष्णा लागे आय। मारे रखे को आप मानो कह किछ नाही, आत इसका हुकम भू सुखोय, तिसका नाम रखंट परोय। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोय, नानक बिघन न लागे कोई। उसत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ल जियो। नैन उपेक्ष ठाकुर का रंग सात संग, बिनसे सब संग चरण चलो मार। गोविंद मिट पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर गह। नानक उजल मता बड़ भागी, ते जन जग माए। सदा सदा हर के गुण गाए, राम नाम जो करे विचार। से धनवंत गणे संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी। सदा सदा जानो ते सुखी, एक हो एक एक पछाने। तुतकी ओ सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या। नानक तिनै निरंजन जान्या, गुरु प्रसाद अपने आप सुजै। तिसकी जान हो तृष्णा भुजै, साध संग हर हर जस कहत। सर्व रोग त्यो हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बखियान। गृहस्थ मै सोई निर्वाण, एक ही ऊपर जिस जन की आशा। तिसकी कटिया जम की भाषा, पार ब्रह्म की जिस मन भोग। नानक तिसै न लागै दुख, जिसको हर प्रभ मन जिते आवै। सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै। सो सेवक कहो किसते डरै, जैसा सा तैसा दिस चाया। अपने कार्ज में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजया। गुरु प्रसाद तत् सब बूझया, जब देखो तब सब किछ मूल। नानक सो सुखम सोई स्थूल, न किछ जन्मै न किछ मरै। आपन चलते आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट। आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आप ही आप सकल में आप। अनक जुगत रस आप, उताप अविनाशी नाही किछ खंड। तारन तार रहो ब्रह्मंड, लख भेव पुरख प्रताप। आप जपायता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सुशोभा वंत। सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारण। प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेले कृपाल। गुर का शब्द जप है निहाल, उनकी सेवा सोई लागै। जिसनु कृपा करह बड़ भागै, नाम जपत पावै विश्राम। नानक तिन पुरख का उत्तम करमान, जो किछ करे सो प्रभ कै रंग। सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाय हुवै सो होए। करणै हर पछाणै सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना। जैसा सा तैसा दिस्ताना, दिस्ते उपजे तिस माए समाए।

बृहस्पति। आप कथे आप सुनने हरि अपे कि आप विस्तार जात स्वभावत श्रेष्ठ उपाय अपने भाने ले समय तुम ते भिन्न नहीं किच होए। आपन सो सब जगत पुरो हे जाको प्रभ जी हुआ बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नानक सकल श्रेष्ठ का जेता। जी अजंतर सबता कह हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मन हो बिसारे तिस ता जेवर कहाँ को

0: संसार बसा
1: दीने हस्त पाव करनित रसना
0: तिसे त्यावर संरचना
1: ऐसे दोख मूड़े अंध ब्यापे
0: नानक काल ले हो प्रभापे
1: आद्यंत जो राखन हार
0: तिसे उपरीत न करे

ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर।

ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता।

गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर

जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जा

या सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया ऊड़े ऊड़ आवे सह कोसा तिस पाछे बचरे शरिया।

तेरांत न पार वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै है सब त्यावै तुजी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दाता हर त्याव

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा।

तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उभरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हो जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख ले हूँ मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप्तरा,

जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो।

पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो

कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो, ताकि ताप तनक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह स्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा,

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुभ्राता। किलबिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तु जप हे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़िल सुने गोंग जो जाहि, सुरस न पावई। सुने मूड चित लाई, चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहे। हो जो या की एक बार, चौपाई को कहे। चौपाई संबत सत्र है, सहस पणिजय। अर्ध सहस पुन तीन।

सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर।

हस्तो जाए सो रोवत आवै, रोवत जाए सो हसै। बसतो होए होए सो उजर, उजर होए सो बसै। जल ते थल कर, थल ते कुआ,

सगल सामग्री तुमरे सूतर तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय पार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आए घर नौनी दे आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसम पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ते अंतर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ते अंतर की खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां स्वासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तर की खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर की बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख होवे।

सृष्टि के उदर बिखय हस्ती समाय कैसे अतुल पहार पार प्रिंगी ना उठावई। चीटी के उदर बिखय हस्ती समाय कैसे अतुल पहार पार प्रिंगी ना उठावई। मच्छर के डंक से ना मरत है बासक नाग,

के मन विश्राम रहाओ। प्रभु के सिमरन कर न बसे, प्रभु के सिमरन दुख जम नसे, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुष्मन टरे, प्रभु सिमरत किस बिगना।

कहाँ प्यार दूत जम दले तह केवल नाम संग तेरे चले। जय मुस्कुन होए अत पारी हर को नाम खुदमय उदारी। अनक पुन चरण कत नहीं तरे हर को नाम कोट पा पाए। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाओ सुख नेरे। सदा शिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया। लाख करोड़ी पद न परे हर का नाम जप निस्तरे। अनक माया रंग न बुझावे हर का नाम जपत अगावे। जे मार्ग एह जात केला तैहा नाम से खोट सहेला। ऐसा नाम सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाइए। छूट सुनाई को लगवाइए नाम जपत है पार कराइए। अनक विघ्न जय आए संघारे हर का नाम तत्काल उदारे। अनक जो जनमे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम। औ मैं नाम कबू न तोए हर का नाम को खोए। ऐसा नाम जगो मन जान नानक पाए साध के संग। जय मार के कर जाए न कोसा हर का नाम महा सतोसा। जय पहले महा अंध दुबारा हर का नाम संग उजियारा। जहाँ पंत को न सुवान हर का नाम तह नाल पुशानो। जय महा प्यान तख प्रभु काम तय हर नाम की तय है हर के नाम की तुम ऊपर श्याम। जय तीर्था मुख तुझ अकल के तह नानक हर हर अमृत बल के। भगत जना के बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम। हर के नाम दास की ओर हर के नाम उदरे जब ओर। हर जस करत संत दिन रात हर हर अवकुल सात कुमार। हर जन के हर नाम निदान पाप रंग जन कीनो दान। मान तन रंग रते रंग एक नानक जन के वृत रुदे के। हर का नाम जन को मुकुर जुगत हर के नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग हर का नाम जपत तो परे न पांग। हर के नाम जन की वड़ियाई हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कुछ नहीं वियोग। जिन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन के मालिक जीना हर तन जन को आप रब दीना। हर हर जन के ओट स्थानी हर प्रताप जन अवर न जाने। ओत बोत जिन हर रस राते सुन समार नाम रस माते। आठ वह जिन हर हर जपे हर का ना हर का भक्त भक्त में छपे। हर की भक्त मुक्त बहु करे नानक जन सब कीते तरे। पार जते हर को नाम काम दिन हर हर गुण गाम। सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदवसे संत प्रताप दर्द सब नसे। संत का संग उठ पागी पाई संत की सेवा नाम

0: सवारी जय
1: मानदी सिमरत के वालस की जय
0: जय प्रसाद अस्त अस्त सवारी
1: मानदी प्रभु का कबू न बिसारी
0: जय प्रसाद बाग में लखतना
1: राग रोए प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई।

ब्रह्म ज्ञानी सर्वसृष्टिकर्ता ब्रह्म ज्ञानी सत्त्वगुणी परमात्मा ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण

निरंजन गोचर गाते अपना पापी चर्चा जय निर्मल पुरख पुरख पतोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण जय स्वरूप केवल जगदीश जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे कर्ण करावन करने हार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई जय सर्व कला।

0: नानक निधि देव मारी सावधान एकागर चित जिस मन बसे सोत निदान
1: इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए
1: सबते ऊंच पाए स्थान
0: वरना होए आवन जान
1: तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: शांत रिद नव निद
0: बोध ज्ञान सर्वते सिद्ध
1: तप जोग प्राप्त
0: ज्ञान से

नानक आया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर दरवेश कसम दे ना सच्चे बाणी लाली लंगर दौलत बंडी है रस अमृत खीर क्याली पै कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता की भी सो सोए जन गोए उठाली नानक ईसर जगन्नाथ।

0: किया खेल बड मेल तमाशा, वाहा गुरु तेरी सब रचना।
1: अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने, शिव विरंच

0: गुरु समृत गह करिया त्रुव बुद्ध सुमत सुवारन को फुन त्रम तुजा फरंत सदा अगपुंज तरंग निवारन को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु न विचारन को हर नाम बोहित बड़ो कल में अब सागर पार उतारन को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु न विचारन को हर नाम बोहित बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को
1: संतत की सत संगत संग संतत की सत

0: दर्शन गुरु सगल सुख सागर कल युग दुरत दूर करबे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर।
1: वाहेगुरु जी।

को शिव मुनि गहनत चात कबलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेक किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेक किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए

0: ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह, जाप साहिब श्री मुख वाक पातशाही दसवीं छपै छंतवा प्रसाद चकर चिन्ह अरबरन जात अरपात नहिं जाए।
1: रूप रंग अरेक पे को कह न सकत कह,
0: अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमतोज कही जाए।
1: कोट इंद्र इंद्राण सहे सहान गणि जाए,
0: ते पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बंत्रण कह।
1: सरण नाम कथे कवन करुण नाम बन सुमत,
0: भुजंग प्रयास छंद नमस्सु अकाले नमस्सु कृपाले।
1: नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनुपे,
0: नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे।
1: नमस्तंग गाये नमस्तंग जाए,
0: नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे।
1: नमस्तंग नामे नमस्तंग टामे,
0: नमस्तंग कर्मं नमस्तंग धर्मं।
1: नमस्तंग नामं नमस्तंग तामं,
0: नमस्तंग अजीते नमस्तंग पीते।
1: नमस्तंग बाहे नमस्तंग टाहे,
0: नमस्तंग अनीले नमस्तंग नादे।
1: नमस्तंग चेते नमस्तंग गादे,
0: नमस्तंग अगंजे नमस्तंग पंजे।
1: नमस्तंग दारे नमस्तंग पारे,
0: नमस्तंग सो एकै नमस्तंग अनेकै।
1: नमस्तंग पूते नमस्तंग जूपे,
0: नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे।
1: नमस्तंग हृदयसे नमस्तंग हृदयसे,
0: नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे।
1: नमस्तंग गाते नमस्तंग गाते,
0: नमस्तंग निर्धूते नमस्तंग भूते।
1: नमस्तंग लोके नमस्तंग सोके,
0: नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग थापे।
1: नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने,
0: नमस्तंग अगाहे नमस्तंग बाहे।
1: नमस्तंग दुर्वर्गे नमस्तंग सर्गे,
0: नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे।
1: नमस्तंग रंगे नमस्तंग पंगे,
0: नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये।
1: नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे,
0: नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते।
1: नमस्तंग मज्बे नमस्तस्तज्बे,
0: देसंग देसे नमस्तंग

0: निराकार सब सवार
1: सपना गला समरत स्वामी सोख्यो मनो विसारे
0: यह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
1: साचे साहिबा क्या नाही करते रे
0: करदा तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे
1: सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे
0: नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे
1: कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रे
0: साचा नाम मेरा आधारो
1: साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाया
0: शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया
1: सदा कुर्बान किता गुरु विठो जिस दी आए वड्याया
0: कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार साचा नाम मेरा आधारो
1: वाजे पंच शब्द तित कर सपा गए शब्द वाजे कला जित करतारिया
0: पांच दूत दबस कीते काल कंटक मारिया
1: दुर्गरम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे
0: नानक तह सुख होवा तित कर अनहद।

0: तृष्णा बहुत नाही बोलना।
1: तिक्की वालों ने की एक मार्ग जाना।
0: गुरु प्रसादी जी ने आप तजिया हर वासना समाणी।
1: नानक चाल भगता जुग हो जुग दलाली।
0: जो तू चलावे तिल चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे।
1: जो तू चलावे तिल चले जिन्ना मार्ग पावे।
0: कर कृपा जिन नाम लिया जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे। कह नानक सच्चे साहिब जो पावे तिवे चलावे।
1: सब सुहावा सब सुहावा सदा सोहला सब।

राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप अठो नंदन प्रथम राग भैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुन्याकी गावै बंगली पुन्य सलेखी की पई बारी ए भैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनावै बंगाल मध माधव गावै ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गावै गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आला पह संग रागनी पांचो था पै गुण करी अरदेव गंधारी गंधारी सिंहुति उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौ खट्यो पौरानंद गाए अष्ट माल कौशक संगलाए पुन्यायो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठै तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस

अब हो सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो हो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो हो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी, जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी, पीवो हो अमृत सदा रहो हर रंग, जपे हो सारिंग पाणी, कहे नानक सदा गाव हो एह सच्ची बाणी, सो कहो तल गुर सेवी अहनिस सहज दर्शन परसे आए गुरु के। जन्म मरण दुख होवे सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटी है, तुद दिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां हंदे जिस पास बैठे आंसु ही है, सबना दा सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी, जैत सरी

रास, जियो पिंड सब तेरी रास, मात पिता हम बारिक ते, तुमरी कृपा में कोई ना जाने तुमरा उच्चे ते चा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही, बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार, श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगौती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे है घर नौने दे आवै ताए, सब थाई होए सहाय, दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब।

अष्टपदी। जे प्रसाद क्षति अमृत खाहें तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसै सुख मंदिर तिसै त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याहिया त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसै त्याग कत अवर लुभावें। जे प्रसाद सुख सेर सोई जय मन आठ फैरता का डस गावी जय। जे प्रसाद तुर सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ति आए केवल पार ब्रह्म।

कबहू होय बह बड़ राजा कबहू बेखारी नीट का साजा कबहू अब कीर्त में आवे कबहू भला भला कहावे जो प्रव राखे तिमही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबहू होय पंडित करे बख्यान कबहू मोहन तारी लावत आन कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू गीत हस्त पतंग हो जिया अनग्रोन पर मैं परमिया नाना रोज स्वागत खावे जम पर पाव ते बन जावे जो तिस पावे सोई हो नानक दूजा अवर न कोय कबहू साह संग ते पावे उस स्थान ते बह न आवे।

0: समाना मेट के गवन पाए विश्राम नान प्रभु के सदगुरबान श्लोक सुखी वसै मसकीनी आया अपने वार तले बड़े बड़े अंकारिया नान गर्भ गले अष्टपदे जिसके अंदर राज अभिमान सुनर के बाद होबत सुवान जो जान मैं जो बनवंत सोबत विष्टा का जानते आप सुखा कर बंत कहा वजन मरे व जो नरमावे तर पू का जो करे गुमान सो मूर्खन दा ज्ञान कर कर पर उस कर दे गरीबी वसावे नान की है मुगता के सुख पावे तरवंता है कर कर वावे दिन समान कर संग ना जावे बावलस कर मान खोपर कर आस बल भीतरता का होए बिना सब त्या जाने बलवंत खिन मैं हो जाए पसमंत किसन बदया बंगारे धर्म रस करे खुआर गुर प्रसाद जा कमट अभिमान सोचन नानक दरगाह परवान कोट कर्म करे हाँ तार श्रम पावे सगले विरथारे अनंग तपस्या करे अंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगाह को कैसे गव व्याप सको जो भला कहावे तुसे भला निकट न आवे सरकी रे जा का मन होए कहो नानक दा केंद्र मिल सोए जब लग जाने मुड़ते कर छुए तब उसको सुख ना ही कोई जावे जाने में किस करता तब लग रोन में फिरता जब तारे को पैरी मी तो तब लग रे चलना ही चेता जब लग मोह मग्न संग माए तब लग धर्म राय दे सो जाए प्रभु कृपा दे बंधन टूटे गर प्रसाद नानखा छूटे सहस कटेला काट तावे त्रिप्त नावे माया पाछे पावे अनक भोग बेख्या के करे न ध्रुवता वे खप खम रे बिना संतोख रही गो राजा स्वप्न मनोरथ वृथे सब का जय नाम रंग सरसो कोई बड़पागी किस प्राप्त होए कर्ण कराव ने आप सदा सदा नान खर जाप कर्ण करावन करने हर सक हाथ का विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हो आप रस होए जो कुछ की न सो अपने रंग सब ते दूर सब हो गया संग बूझे देखे करे विवेक आप ने कह मरण बिन से आव न जा नान सत ही रह समय आप उपदेश समझे आप आप रज सबके साथ आप गिनो अपन विस्तार सब कट सकाओ करने हर उससे बिन को कुछ हुए शांतरंतरे कैसो अपने चलताप करने हर कौ तक रन गया पार मन में अमन अपने माहे नान कीमत कहने न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने बखियानी सच सच सत सौ की ना कूट मुद किने बिरले चीना पला पला पला त्रिपत सुंदर पार नूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कड़ कड़ सुनी सरबन बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मन प्रीत सलोका
1: संत सरन जो जन पर सोजन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुरे अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जगत है संत कै दुखन जम ते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सोबा ते हीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन धान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक पीतर है संत कै दुखन ते मुख पवै संत कै दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जो लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संत कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब कुशलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाव को नाहे नानक संत पाए पावै तौ पीगत पाहे संत का निंदक महातताई संत का निंदक हिंटिक न पाई संत का निंदक महात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजतिहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत के निंदा दुख में दुख नानक संत पावे ता उसका भी हो मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा भिखारी संत का दुखी जन्मै मरे संत की दुख ना सुख ते टरे संत के दुखी को ना ही ठाव नानक संत पावे तन लय मिलाए संत का दुखी अद बीते टूटे संत का दुखी कित काज न पहुँचे संत के दुखी को ध्यान प्रमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंदर ते थोथा जिन सांस बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ किस नाही अपन बीजा पे ही खाहे। संत के दुखी को अवर न राखन हार, नानक संत पावे तन लय उबार। संत का दुखी ऊँ बिल लाए ज्यों जल में होन मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पावक ईधन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटै केला ज्यों बुआड़ तिल खेत माही दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुरही पया, नानक जो तिस पावे सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजा न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत के दुख न त्रिष्टै कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए। भया कीर्तना मिटै कोय, नानक जान सच्चा सोए। सब कट तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, सास तिसे त्यावु सास गिरास। सब कछु वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कुथिया। अपना खेला करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से सलोक। तजो सियान सुरजन हो, सिमरो हर हर राय। कास हर मन रखो हो, नानक दुख परम पौ जाय। अष्टपदी मानु की टेक प्रीति।